अरे भव सागर से पार उतारे, जब जो जावे इनके द्वारे, पापी से पापी भी तारे, भव सागर से पार उतारे, तो इनको नीचट अरे हाँ।

सो फसम फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

बाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्व भव चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी में।

करे से भिसर जेने हरे भजन करे से भिसर जेने लंका राज दिलाए करे ते भी।

करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत।

हमन से भजलो रे हरी तन से भजलो रे हरी राम नाम है जग में।

उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये,

0: दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
1: शाही पकवान और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ। मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
0: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
1: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज कुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
0: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
2: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
3: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
1: ये लीजिए महाराज।
3: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ, शाही रसोइये।
1: जी महाराज।
3: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
1: जी महाराज।
3: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
0: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
4: महाराज ने चम्मच को उठाया, पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
3: भाई वाह,
5: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
3: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
4: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
3: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मुन्नू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। वो बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी

0: कुछ सब्जियाँ और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, हरा धनिया, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपुरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपुरी। अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपुरी।
1: कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपुरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गुगली, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुनो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगली गुगली, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊं?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
3: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
1: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार, आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सबने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
4: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय, मेरा नाम है चमकी और आप?
5: अब्दुल रहमान।
4: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
5: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
4: ओ, और आपके गाँव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियाँ उगती है?
5: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियाँ जैसे लौकी है।
4: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊँ।

0: मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ, गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
1: मेरा नाम शांति है।
0: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
1: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
0: हाँ, सिर्फ आलू? हाँ, फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
1: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
0: अरे, मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ, हाय, आपका नाम क्या है?
2: हमारा नाम है लक्ष्मीबाई।
0: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
2: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
0: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ, हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
3: पालक।
0: ओ, फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
3: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
0: हाँ, मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा, आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
4: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
0: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
2: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
0: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके, बाय
5: बाय।
6: मजा आया ना दोस्त।

0: दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। भाई बात क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़ भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़ सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती है, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते
1: लोग जी। तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए, और दूसरी तरह जैसे पालक है तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू भी पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना तो वो वैसा ही बना सकते हैं तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही है, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है।

0: तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बनाकर उनको खिलाना चाहिए।
1: जी आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले। और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत जी दो ही चीजें आप

0: अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें वो जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के भी सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के वो जगह पे पहुंच गए और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। तो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चलत हैंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काय के पहुंचवे में तना टाइम भी लगे होते हैं, ठीक है। तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

बैत बाउर मिल केन धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान।

सिपाही कौशल्या की पदवी पाई गोदी खेलत रहे रघुराई। तो प्रेम भाव के भूखे भगवन प्रेम भाव के भूखे भगवन वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखन। प्रेम भाव के भूखे भगवन वीरन तज पाठन अपनो प्यार हो बुंदेलखन। भारत माता को हृदय दोहे सीपे हमें गमन।

0: पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी।
2: श्रोताओं, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक

0: नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर माता रानी के दरबार में। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
1: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से है, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट था, फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुमदेव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की। फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है। वाणी से प्रमाणित नहीं होगा, यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तुझे मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है। अच्छा, माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है, बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 2251 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं, जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है, जगह जगह से

0: जाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं, जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनाशे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है, और ये तप स्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है, और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं, और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी से अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं, और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रख रखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन के या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया, और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व तो बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपको शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें यहीं के हो?
2: यहीं के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसे महसूस करत यहाँ जन्म लेख है ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहे चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारे सब भंडार भरपूर है, और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना, सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है?
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे, मतलब ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियाँ उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: हाँ, उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है।

0: ये है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया है।
2: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहां की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सो सुनते हैं एक और लोक गीत धनकुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद ही आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला

या मठ जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी को लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कोते राजन के कुमार
2: आओ
1: और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हते राजा के कुंवर
1: एक हते बानिया के।
2: हाँ जो दो जने हो गए
1: हाँ। अच्छी तरह से गए उनकी दोस्ती
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम काहतों के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबन को चले जावे
2: दो ही के दो
1: शिकार भी अपने घूरो मस्के भी अपने घूरो मस्के। अब जब वन में पहुंच गए तो जा शिकार खेली बस शिकार खेली खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बरसीत ने फिर कर गया।
2: अच्छा
1: कल के दिन में भी बोले कल ले बीरन बोले अब
2: हाँ।
1: बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे थे। अब राजन को तो बस बीरन हती अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा
1: बीजन और बादशाह दोनों जने हो कह राजा हो बीजन ने जिस बार मार बनवाए गाड़ी फाड़ी बनवाई बार छटवाए कल कबैया कहाँ के जाने छटे कल ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा
1: अब जब नाव घेगो से नाव को रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है फलाने के लगन है फलाने के सतकरा है फलाने के पक्या थे
2: जा सही के
1: नाव को सब पतो है नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: सो बस अब बीरन के बार बन गए अब राजन के बादशाह के बनने तो बादशाह के बार बने तो बादशाह बोले बोले कर ले सुताजा कब बोले कर ले कही राजन के राजा बोले कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है हमारे हम किसे चले जावे। अरे बोली कर ले राजन के राजा आप किसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं ना।
2: अच्छा
1: तो बस बोली कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा
1: के नाव होगा बादशाह होगा बीजन हो गए अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चले ससुराल के जाने तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी तो बामे बीजक लगवाओ तो कि जब बीरन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा
1: गली में से बटी हटी उन्हें लगी प्यास तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी बीरन गौ पानी पीवे के लाने तो बने बीजक बाँचो।
2: अच्छा
1: बीजक बाँचो बामे सू में गलियां अलग अलग बीरन हो बदमाश बीरन बदमाश हो।
2: अच्छा
1: तो बीरन ने का करो किसका के पानी पी के बावली में और वह बीजक को भरा दो
2: ले उसका
1: अगर हमारे आगे जब बीजक को जो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाँचे ले संग छूट गो इसे कह हम जी ससुराल चले
2: तीनों
1: जा पे बीरन बदमाशी के रहुआ। तो बस अब राजा पानी पीवे गए तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी सुबह में बीजक में गिराव लगवा रहे तो राजा ने अपने खोबन की उलीच उलीच के बाय धो जाओ और फिर उगे बाँचो बाँचो बाय सुबह ने उनमें प्रधान पूरा लिखो जा राजन के कुमार को रास्ता गई वो जब बीरन के कुमार को रास्ता गई दोनों जने तो बोले कर लेते वे बीरन बोले ये राजन के राजा बोले तू बहुत बदमाश है बोले कर ले पुरखन को बीजक तेने मिटा दिया है हट कर ले कि हम अपनी ससुराल देते अपनी ससुराल तो बोले कर ले उनकी शर्तें लग गई। बोले कर ले जो पहले आज विदा करा के वो जिस बाउरी पे ठहरे क्या दिन किसी को बीत जाए अपनी ससुराल चली गए अपनी ससुराल कर ले जी सताई रखा नाव बोले कल जी राजन के संगे चले
2: सही है
1: अरे हमारे वर्ग के संगे का चले हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं तो राजन की कुमार और सताई का कद्दू जने जा रहे बीरन अपने सतारे चले गए। अब सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंचे तो अब राजन की कुमार खुल गई प्यास बोले कल्ले सताया कब बोले कल्ले कल ये राजन के लिए कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है इसे पानी को देखो। बोले कल राजन के लिए बारह कोस में ना पानी ना माय पानी अपन वन में हैंगे। बोले कल्ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना उनका के बोले कल्ले हो महाराज सुबह एक का खबर पे चढ़िए देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है पानी इधर होगा
2: बिल्कुल।
1: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती पानी जल्दी हो गई। बोले कल चल चल जा सुबह लोटा घड़ी लेकर सुबह जन्म पाई खुली से जित गए आराम से भी नगर चले गए। तो उतर काकिस्ता हाथों के जानवर लड़की राजन को भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही
2: अच्छा
1: नदिया में स्नान कर रही थी। तो सुताई अक्का ने कहा करो झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल्ले सताई का क्या बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले उस तालाब में पानी ऐसे ठीक है तुम ले आया बोले कल्ले हाथ जाके ना पूछो पानी पी लो तुम बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी हो थे कि मचो सचो भर के आ। बोले कल्ले महाराज कल्ले तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही है तो उसके साथ हमारे मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे अरे बोले कल्ले बगरा भी तो वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी है जब बोले कैसे
2: सही है
1: जब पीछो करे अपन ताए को और मुंह करे ताला ताए को बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: अच्छा नव कक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
0: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा हां फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: बा बोल रही है। हाँ।

0: चाहे आपका बोले कल राजन के राजा
1: हाँ।
0: सुनो हमारी बात अभी से बोल दियो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दियो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं
1: सही
0: बोले कल नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे
1: हाँ।
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ।
0: भूले मोसा।

0: गलिया लेखो बाता दियो रे सो लगे काहू के हरिद्वार जी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लगे
1: आप पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दीजिए। अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए। इनको बदन शरीर है कैसा, मुंह करने माइक है और पूछ करें इंताइक है। कई के अब जाइए से बताए सुनने के बाद माँ से बोली।

0: या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: माने मिली ना बताई न बाने बदन काड़ो जलीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर रही बस साहब उनने किसी गली से पूछ ही गई गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ गाँव की लानत तैयार हो
1: गई।
0: अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचे जा तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरो सफर खूर के और बाप ने जेल चली जो ये हती से जाते हैं भवन द्वारा सत्य अक्का को देखो तो ससरा सुबने द्वारे उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुब गई घरवाओं को बंधो अब भाभी से बोली भी

0: बिल्कुल, क्या अब तुम
1: दबा भी नहीं कहा ऊंचे कंदीला नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
0: ऐसे
1: और तुम्हारी आ गए चाला।
0: अब लुबग्गा आ गए तुम
1: लुबग्गा। उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
0: ऐसा
1: भाभी से कही। सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दे के लाने तैयारी के लिए तैयारी करी। अब इन दोनों ने कही चला
0: अच्छा
1: बोली कर ले देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बना दी
0: बिल्कुल।
1: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी यहाँ वाला थे
0: सही कह रहे
1: अब खुला खुला थे अब खुलो
0: हाँ
1: में तो

0: सलाह हो रही, दो जन की सलाह हो रही, नाव की और राजन की। सरस्वती सुन व्यंजन की भोजन बनाए, भोजन बना क्यों और आज्ञा दे दी भोजन की लाना। तो दोनों जने भोजन को गए, भोजन को गए, साफ सुन चाहे एक ले चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई, और वहां से बने थना ना जवाब ठोक।
1: अच्छा
0: ठोकने ठोकने ना तो भेद कैसे खोलेगा।
1: हाँ, सही है।

0: जी तो उनने टाठी सरका के माए कच्ची अब अभी खुलवाओ के जई है जा
1: सही जब बात
0: जई है जब बात बब्बा ने बात खोली सो बोल समझ गए तो उनने माए टाठी माठी सरका के और बस सुता जा काने पर झटपट जो कछु राजन तेरी जो बाप बांधी और बाप नहीं बांधी और बस टाठी माठी जो कहने लग गया कि कल का है राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल महाराज मैंने अपनी टाठी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया
1: जैसे टाइम लगता
0: जैसे टाइम लगता बोले कल सुन ले कल सुत्ता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवा जाना इसको मिलवा जाना तैयार हो गए जहाँ से करा उनको तो उन्हें भैया घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चवन पीटने कस रहा
1: अच्छा
0: वो पने के दिन तो गई आगे बड़ी आगे
1: ये
0: भी दे रहे थी कैसे सभी लोग आ जाओ तो बस जो राजन को हाँ साफ चल भी हो गए तो राजा का कले तो क्या है जो ऊपर का पले क्या नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे निकल के और बस फिर करी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा जाओ बनी रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे।

0: नहीं देखो रिश्तेदारी है
1: सही है
0: वो जाती जिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: पड़ोस की ने कही जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो पेर वेर को संग है
1: सही है
0: डोल भर के जाओ तो उनने हटी सो जैसे कछु पुटिया प्रमोद की वही रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोर पाया ले गए
0: मई वही जहाँ उनकी रानास हटी फिर पहुंच गए भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन है तो ये भूखी अब रात को है समझ लिया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन उनमें लगा थाली को भी पहुंची तो लगा थाली जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनी थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो उनने बिस्जा की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन गई और असम दो हाथ दे रही संत।

अरे भोर जी, अरे अगर नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोला नहीं से, लेकिन बाने खरीदो हाँ जाकर।

अपनी कामनी। अरे खोलो का, अरे किवार जी, उन्हें खोलो कंस के बार, लेकिन उनने नाव से कही के बार नहीं खुली। अब जो जो है सुनो, साधु ने सुनो दोहा, साधु के रामन से शंख बजे सा दू जा रे

0: जी उन्हें संत बजे से साधु जगे बम घले झूठ अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे
1: सही है कि का हो रहा
0: का हो रहा
1: कते दुनिया भगत जावे रु बिछोना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो परोस में पतो होगा कि रानी राजा के पास मिल गई। अब फिर की दो हाँ कह रही हो ऐसी।

लड़की लड़का से लड़की भाली से मेरे पे ब्याजी। अरे ऐसी सासों का काम किया थी तेरी कुखन बांझई हो जाती। ऐसे सब कुछ जाए के लड़की होती तो परोस मिड़ी पे ब्याह शादी कर देती तो बोल रही ये तो गड़ गया है ना यार। सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह मेरे में रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सजीव हो सोने घूरो मस्को तो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुराओ और भोजन करो भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे ठीक है। जो गए डच गए खाना खाओ खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई गए उन्हें खाना पीना सब तो महीना भर के लाने रखता खाती घर चले गई। बस अब हकावे बारे हतीसु जैसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्के छोड़ के अब खुद उनमें हकाई अब सुताई अक्काल है कबाज जी ने हकाई सुबह हका के वो बस अब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से बमूरा को पुलो रहे सुबह उतरे बस गए शाम होगी से बस गए बस के में अब बोले कल सुनो सुधा का बोले कल का कल ही पापन को ही छोड़ जाने यही रुकता है। अब्बा सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सुताई अक्का से कही के सुताई अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है के पति लगाओ सुताई अक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को तीन पात्र में कहा खोलिया बोले कल एक आप को एक हम को एक रानी को अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमा रानी की फार के मार फिर अब मैं सोच पात्र लड़की आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें जब जिस सुबह घोड़े की पछाई की।

ठीक है थी एक बजट बार बडूर बंदी थी तो बचपुर के बाने पीने से मार लाए बडूर को कि ये भगे तो जा ये टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचु किया ले सुबह सुनने थे तो घोरो भंसाई रात भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बडूर कहीं दूर सो नेक चावा पट्टों का घोरी में सुबह दूर सो उनमें कई होते रानी मारा

एनर्जी थी हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अभी सुन दरबारे के चले गए, वे अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति से कहा कि नस्खो वे घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी मैं इसको हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्य से कचिवती से राजा गिलंद की बाग में जी जा रहा जा रहे से वो ने भज्जा घर वाले नाय के तूपी माय की बोलैया तूपी सुबह भी अति जो रानी वो तो मालिन हती से मालिन गोली गोली कर ले गया। ये कौन कहाँ की पाप नाड़ी कहती है तूने एक मोर रानी ने वो मालिन को दई सोनियाली जी तो राजा की बहू में भीतर काट गए बाबा गिरा दिया जाए अपने अभी तो राजा की बेटी थी उसे कछु मोरन को कछु टूटो है तो रही हती भी तो सुबह भी हती तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई ऐसे कछु बिलादना हो गए दुकान दुकान तो एक दिन आओ अब उनकी बेटी हती राजा की यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तो लगती बा सो मालन रोजी ना डाली लगावे और फूलन को ले जावे सो राजन ने हकी सोची के मालन तो इतने आऊ तो हम आज बगीचा घूम आए बगीचा घूमन गए भी सोते बार राजन की लड़की रहे तो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है, है तो कोई राजा की लड़की सुबह तो जैसे जैसे अपने घर पहुंची घर पहुंचे सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ तो उनने डाली उन्हें लगाई रानी अब बादशाह ने हती सो राजन की पिया नहीं होती बाबे नहीं होता कहूं कहूं अबे नहीं होता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की सो अपने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसु बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की सो बिन्ने सोची अगर बिन तो हमारी खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़ी आउती भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सो नाव से पूछी जावा बोले क्यों खवास रखा बोले कल कहिए राजा कल कारण का है ई को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल ये रानी को बन में छोड़िया है और भगया सो उनने अति से घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे वो निकल ले चलो बताओ कि तेरे कौन छाड़ में छोड़ फिर जो रुख तरह छोड़ी थी वही रुख तरह ये गए दोनों जन नाव नहीं गए वे दो ही गए सो वो निकल ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धरी सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद की बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतिया जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन ने गए सोने भैया मालिन ने उन्हें घर आए बोले कल क्यों रे कहा हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बात और हमारे राजा सुन सुन तो तुम्हें जान से मारा ले हाँ सुबह आराम से मालिन को साधा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है रंग महल में

0: मालूम है जोर में बोझ। राजन बोली कल एक दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे, उनने सब नाश कर दिया बगीचा को। सोने चढ़ गया, चलिए तुमको राजा बुला रहे। बोले कल ले हौसा, जब कभी ऊंची हथी बिल्कुल की, और जहां से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के। बोले उनकी गैल में सलाह हो गई। बोले कल अब तुमसे बात करे से तुम मूर्ख काटो, और हमसे बात करे तो हम मूर्ख काटो। बोले ठीक है। सुबह गए सो राजन की बगल में एक बोले बैठो, एक बोले बैठो। अब उन्होंने हटे एक बीजक राजा गिलन जनो कि अगर जो बीजक जी लोग पहुंच गए हम उस लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे। सुबह भी हटी तो अब उन्होंने हटी तो दसला हो गए, बस सका ऐसा काम लगाओ। अब वो रानी ने डेरा जाओ देखो भाई, राजा गिलन ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कल नहीं, ये राजा गिलन को बाग कटे चलिए और जो मकान गुले चलिए। सुबह ने कही तो ठीक है, सुबह जो भैया जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जावे जावे। सुबह रानी जो बबेटी अच्छी से छाजी पे हो जातन कर रही थी, बीजक लाई थी, बीजक वही लोटा के रखती जाता वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खो गई जो बादशाह ने बांच ले बीरन बांच ले बादशाह ने बीरन ने बांच बोली कर ले ठीक है। बोली कर ले कह तुम तसला पटकत पटकत वो तो सार पांच ही की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं कही कछु तुम ना तुम सानो हम ये डारा सुबह गए डारा तो आराम से गए डाल भी के लाने तनक तसला में से गिलाफ पहुंच गए वो इमेज दाओ बेटी में दवा में जो राजा गिलंत की लड़की तो उन्हें अच्छी सो अभी तो खिलाड़ी है तो उन्हें वो लोटा दाओ वो लोटा उनमें दाओ सुबह ने थल ये गंद की बल्ला के और बल्ले लोटा हो गई बाग में सुबह सुनने फिर भेजा छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब ये गए पकड़ा मजबूर है ये तो कोई राजा है सकल की बोलत कैसे है। बोले कल महाराज के नहीं मजबूर संजू जो राजा पड़ी बोले कल जा पड़े बोले पकड़ लिया बोले कल आ रहा चलो अब दुनिया में ले गई थी वो बीजक उनने वहां से लाओ तो पूरो करिए कब दो मिल रही दो मिल रही सुबह लेकिन भाई फिर उनकी सलाह तो बहत गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करेगा तुम काट ले। सुबह राजा काउ समाप्त न कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भाग गया। एक दिन आओ तो बोले मेरे को खिच्ची आके पहुंचेगा सो राजा ने कही बोले कर ले कही साहब कहाँ से रहने वाले हो कैसे हो बोले कर लेते दीजिए सुन फिर वह लड़की की शादी करी उनने उनकी रानी होने दी हती बात तो
1: देखो दोस्तों जा तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और ई किस्सा को आनंद लाओ। अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

सुनो तो जी काके रे, अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काके रे।

रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशी राम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाव है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयन की बातें करें और सुने। और एक क्रम में राम गोपाल

0: बाल दादा हैं, अपन इनसे बात करें और इन जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत हैं एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें कि आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही, दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के। अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया
1: दरस।

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सम बताओ है। और अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कागे रे विवाह दादा
2: सेना के पूर्व पटक ग्राम सेना गिलाटी गमगा कैसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे तरह
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने ढो बच्ची देखे ना तुम्हें
1: और
2: क्या वर्क कर हम करा बस किए काम वाम हम कर तुमने कर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के भी चाहते जब जो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत का परेशानी देखते हैं आउती है अपन का
2: बुढ़ापे के? तो देखो ना खाना मुड़ा एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिरार हर एक बात की नेक में मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो भी हमें ले आया तो हम खा रहे हैं
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी आओ।
2: आओ बैठ भी आओ थे नहीं आओ थे पूछा थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने
1: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते?
2: सेवा खुशामत सब करा थे जनाब जी बैठे अब बैठे भी है तब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर कर लगे तेने
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका था का कर सका
2: आप झेल सका मतलब बैठ वो है सीधी बात है पैसा तो खर्च तो चाहिए है। अरे कछु नानिया कछु तो 10-15 उसको तो खर्च है ही आदमी को मान के चलो कछु ना कछु वो 10 तो उठा के चल जाते हैं।
1: दिन भाई आपको कैसे कटा था?
2: मेरा ढोल बच्ची उनतान दिमाग लगा दे सिजारे सिजारे अपने छाने में चल बस।
1: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी?
2: हाँ
1: जैसे दिक्कत
2: तो देखे के नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी ही दिखा कगदा नहीं बांस पाऊ मेरे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो खावे पीवे की आपकी का है?
2: खावे पीवे की कौन तक नहीं है जो घर में है तो खा रहे।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में की में का अंतर है?
2: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत इज्जत नहीं आया और पापा जाना फैली अरे पापा की जाना फैली मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे बाल बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जठाने न मिल गए दीवानी न मिल गए ये ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अभी के सब का
2: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कभी आपत्ति नहीं है प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कभी आपत्ति नहीं आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छो हो सका
2: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में और का जो काम नहीं था प्रेम में मतलब जीव जीव

0: लड़ाई झगड़ा ना उज्जे पैसा पैसा टका खर्च ना उज्जे
1: हाँ घरे पैसा रे जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं
0: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करे चच जी और कैसे रहे चच जी आपका कंचाओ सब जनन से आपको काके वो है
1: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करे
0: तो वही बात बड़ी बात
1: मतलब शुरू से आप बताओ यात्रा ना कछु
0: यही बात है आप यही बात पूछन चाहो शुरू से बता दो आप आपका क्या वो चाहते
1: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान उनको माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की रूप है जो बाप मताई को ठगड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे ठगड़ा मतलब आगे चली जाइए तो पूरी जी मतलब
0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ है अब पैसे नहीं तो जा कर रहे हैं जो मतलब है जब तो चले जाओ ये पैसे आते चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाते तो कहाँ जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
0: और का के वो चाहता
1: जी उचाउ के आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को संभाले खाने दीवे तीन चार सौ को महीना मिले दिए तो अपने में खाद चलाओ
0: ठीक है दादा जहाँ आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखबे चारों धाम करें और भैया ये तो बातें अपनी अबे हती सो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे हो भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गौ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुने।

हाँ तो भैया अपन और सुनत हैं एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया, अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम, सुनो जी काकेर है, ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आउत हैं ये कार्यक्रम को, सुनो जी काकेर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करन चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया, हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और ये कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को, तो नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और सो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे?
2: दीनदयाल बोल रहे सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: सर बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवा है जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक
2: सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो
1: हेलो। बढ़िया
0: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पाए, ऊपर वाले के पाए, और सब बहुने वाने हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: बुलबुल जी की आवाज में।
1: हाँ,
0: चलो ठीक है, अच्छा गीत के बोल बता पाए आप?
1: एक गीत कोई गाओ तो सुना दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा चलो
1: बोल
0: ठीक,
1: तो हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है। ठीक
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनाए हैं।
1: है भैया, जयराम जी की।
0: जय श्री राम जय श्री राम।
2: लाल दुपट्टा उड़ गए मेरी हवा।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। तो जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक उपाय।

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है देखिए। बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सच जाने त्रिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

अंत खोल दिया। कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद विराज गोरा।

0: भूल शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो बुंदेलखंड नंबर 1950 है।
2: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरी गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
1: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
2: जुगियाव से सतीश साहू जी?
1: जी हाँ सर।
2: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
1: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
1: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
1: ओके सर,
2: नमस्कार भैया जी।
1: नमस्कार।

0: माता सिंह भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: साथी मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुना दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुना है।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे सुनते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है 94-25-14-17-26। बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

राजा रंक सबई के लाने उसे न चल है एक बहाने दीने जन्म लौसो जाने राजा रंक सबई के

नहीं जात वह हाट बाजार, नहीं जात है मेला, वही जात है हाट बाजार, वही जात है हाट बाजार।

नाम के अक्षर पढ़ के राम नाम के अक्षर पढ़ के खुल जे ज्ञान की बर गया।

अभिमान करो ना प्यारे, मद अभिमान करो ना प्यारे, बांधो ना पाप।

अब करो भरोसो हर पे, अब करो भरोसो हर पे, करो भरोसो हर पे, ना करियो अपने घर पे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों हमारे किसान साथियों आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कई कई ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैलसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवक जनित रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उपटा या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30-70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर

0: उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो हाँ, कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
1: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उक्ता या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से, और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं, और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती है। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और अगेती बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारक हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालेक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालेक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: जी मैम, ये मैम अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैं बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में

0: जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए?
1: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
0: yes.
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो?
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है।
1: जी
0: तो इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं इस
1: बिल्कुल मैम
0: क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम टमाटर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है, तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग।
1: जी
0: और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो
1: जी
0: ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो
1: जी मैम
0: इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से किसान को, शुरुआत से अगर ध्यान देगा
1: जी
0: तो उसकी

0: रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट अल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा।
1: मतलब इसका ये कारण, मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी, और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत में तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था, मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है? मैम
0: देखिए जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण

0: जो होता है वो प्रदूषित होता है।
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है,
1: जी मैम,
0: क्योंकि हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है
1: जी मैम,
0: कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं।
1: बिल्कुल मैम,
0: और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम,
0: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए।
1: जी मैम,
0: तो लोग जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाएं और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएं
1: जी मैम,
0: तो पर्यावरण भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक जाएंगे।
1: कहीं ना कहीं
0: जो है
1: हमने भी
0: एक और
1: जी
0: विकल्प यही है कि शिक्षा।
1: जी बिल्कुल, आपने
0: आप
1: सही बात कही है कि शिक्षा एक ऐसा विकल्प है
0: जी,
1: जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर मैम ये आती है,
0: जी जी जी, अब आप जब आप शिक्षित होंगे तभी आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: ये पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाए और जंगलों को ना काटें, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहां ले जाएंगे, तो वो मजबूर जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005-7 की बात है कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 7 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ।
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम,
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी,
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है वो शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे।
1: जी मैम,
0: तो लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं
1: जी मैम,
0: तो जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे
1: जी मैम,
0: कोई भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था।
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: बिल्कुल साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा को लेना नहीं चाह रहा था लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए? इसको
0: रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कारपूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल।

0: से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
1: जी धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपनाकर। जी धन्यवाद।
0: थैंक यू साथियों। इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4। अपना रेडियो अपनी बात है।